0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो औजिसमेदर दुनिशी दापू पसरच लग नास्ता हुकम नुस्तर गिरा मंदे तोरी तूरी की गी
2: दिलबरा नुतमात नवाय ददे मसाले खो देर आसान हल दे
1: अंकल जी हगा सो
2: हम उस वर्षा औ द बटाग्राम हर ख मेडिकल स्टोर औ जनरल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टैनिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टैनिक हो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चे दयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज मंड वही
3: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक। पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी भी हर वक्त बेदमाए पमख मुँह तिर सरी भी या दस्तर गुजलान दे तोरे हल्की भी दकीनास्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहाग माशुमान दपारा हम फायदा मंदे कुमची वधन कई जल जल की गी गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली भी नुनुन याद साथे पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरा दा 0311-158-7745 बल नंबर दे 0311-84-33-878।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
0: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
0: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा,
2: इशारिया चार बटाग्राम की इस्लामी नशरियात, इस्लामी नशरियात हमारे साथ रहिएगा।
3: इशारिया सलोर बटाग्राम दावख्तासो जमुंगा इस्लामी नशरियात आ रही।

हाँ जी ग्रानोर जी, मुकुता सो रही रेडियो अमन जी काल तरफ थे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी दूसरे जम का रबता नहीं की 0309-711-8899 टेलीफोन कॉल है 85-83 मैसेज आदि के लिए रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटाग्राम दा जमुंदे फेसबुक पेज दे कमेंट फलारि हम तर त सवाल त तपुस मुंदा कौले शी आखुर जमुंगा द्वीम सवाल कडे उ छि दे मैसेज पे जरिए मने सुक तलाक पर किनो दे गस हुकम दे जो कल तरफ ता कल सर जमुंगा रابطہ उशला नु सीधा किनी बे वदी मसली तरफ त लड़ छु। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाज सफा न राजी सर जी। हाँ जी ग्रहण और दिन कुता सुबह राय करम दी मोबाइल तक कॉल तो है मोबाइल आवाज का सुबह की सफा राजी मोबाइल नंबर जे ता स्टोर हुई ता जान सर उली के 0309-711-8899 0309-711-8899 दी नंबर मन रब तक हवाई आसानी सरा की जी। कॉल तरफ था गुरु जी प्लानिंग सरा सुखी जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी सो खबर कोई जी अपना मसला बयान कहे। हेलो जी जी ऐसी बच्चे सो है तो हेलो हजी ग्रानोर दिन को तस्वीरी रेडियो अमानी फिर मटे सी शरीयत 4 बटा ग्राम प्रोग्राम दीजिए मुझे 3 दुनिया ये भी नतर 2 बजे पूरी दा प्रोग्राम तस्वीरी रेडियो अमानी फिर मटे सी शरीयत 4 बटा ग्राम बंदी अवरेजी।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: हाँ बिल्कुल ग्रहण अर्जुन को श्रातलशे ता समुदा प्रोग्राम के कॉल का वलशे पर 0311-84-33-878 बानी ता श्रातलशे पर प्रोग्राम के मुक्ता कॉल का वलशे दिन आवाज हम चुकुम पीटी सेल नंबर दे 0997-310-400 बांधे हम ता श्रातलशे से किस्मत तासो दे डॉक्टर सेब ना सवालात भी पुख्तनी में बिल्कुल तासो मुक्ता कॉल का वलशे मुंगा तासो कॉल चुकुम देगा हम हस्तले शो तासो मैसेज ने चुकुम देगा हम मुंगा शामिल वली शो बिल्कुल चर्त के तासो सेहत वाले सर परेशान है नो बिल्कुल डॉक्टर अकबर कुरैशी से मुंग सर पदा प्रोग्राम के नास्ता कवि मौजूद दी मुंग सरा रातले शे दिन तासो द खपल सेहत वाले सर बेहतरीन मालूमात चुकुम देगा हासिल वले शे हाँ जी सुबह मुंगा कॉल तरफ था गुरु चुम सर लाइन बाजी सूखती हो सब बिलकुआड़ी अस्सलाम वालेकुम जी हेलो खबर हाल दी कॉल चुकुम देगा ड्रॉप शो द मैसेज पलारे बाजी मुझे मैसेज ले गले भी अस्सलाम वालेकुम आई एम आरिफ शाह
1: वालेकुम अस्सलाम
0: फ्रॉम बाला बांडा डॉक्टर सेबता सलाम होया जी वालेकुम अस्सलाम डेरा मनना जी सासो शुक्रिया